to remember the suffering of the thirst on the day of Ashura. For Imam Hussain alayhi salam, this water of for Imam Zainul Abidin alayhi salam, the issue of the water of wuzu had another point of remembering Karbala. We have narrations where we are told that, you know, when they, his servants, for example, would bring the container of water for wuzu, when he looks at it, and I'm sure he was reciting the dua that his grandfather has taught, but then looking at the water, he remembers the suffering of his father and his brother, especially Ali Asghar. And he would start crying about this suffering and the tragedy of Karbala, sometimes to the extent that his tear will flow into that container or the bowl, and the water will become mudaf, not suitable for wuzu, and it has to be changed. Zadaran Hussain, Imam Zainul Abidin ke ek alqabat mein se ek laqab hai, al-bakka, yani jo bahut zyada rone wala tha. इसलिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाक़ियात करबला को भूल नहीं सकते थे. किस तरह से भूलते, यहाँ तक कि जब वो 20 साल कम से कम कहा जाता है मुसलसल इमाम ने करबला के मसायब को याद करके रोए हैं. यहाँ तक कि शहर वाले जानते थे, इमाम अगर किसी दिन बाज़ार में खुद आते हैं या गुज़रते हैं वहाँ से, खुसूसन जो बुचर होता है कसाब, वो जब दूर से इमाम को आते हुए देखता है, वो एक कपड़ा लाके जो है अपने वहाँ जो गोश्त बेचता था उस पर रख देता था, ताकि इमाम की नज़र जो है जानवर के गोश्त की तरफ ना जाए. सैयद सजदाद वहाँ रुकते थे, कहते थे कस्साब ये बताओ, इस जानवर को ज़बह करने से पहले तुमने पानी दिया था या नहीं दिया था. अज़दरार हुसैन वो यही कहता था, यबना रसूलल्लाह, आपके जद की सुन्नत है, उनका इरशाद था कि जानवर को ज़बह करने से पहले पानी पिलाया जाए. मैंने इस जानवर को पानी पिलाया है. उस वक्त इमाम सज्जाद कहते थे, लेकिन हाय मेरे बाबा, अलातश अलातश कहते रहे लेकिन किसी ने कतरा पानी का नहीं दिया और मेरे बाबा को प्यासा ज़बह कर दिया गया. हज़रत हुसैन इमाम जब इतना रोते थे तो एक सहाबी जो इमाम का करीबी था, वो इमाम से ये कहता है कि मौला आप कब तक रोएंगे. 20 साल की रिवायत को अगर जहन में रखा जाए, कहता है कि मौला कब तक आप याद करेंगे, आपको सब्र करना चाहिए. उस वक्त इमाम ने कहा कि शख्स तूने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया है. याकूब के 12 बेटे थे, उसमें से एक गायब हो गया था. याकूब को मालूम था कि वो मरा नहीं है, लेकिन फिर भी याकूब इतना रोए हैं कि उनकी आँख की बिनाई जो है ख़त्म हो जाती है. मेरे नज़रों के सामने मेरे ख़ानदान के 18 अफराद एक दिन में कत्ल कर दिए, मेरे सामने कत्ल कर दिए गए हैं, तो हम किस तरह से सब्र कर सकते हैं. उस पर उस शख्स ने एक जुमला कहा, यकीनन करीबी साहबी था जिसमें जुरत थी, कहने लगे मौला लेकिन आपके ख़ानदान का ये विरसा है, ये आदत बनी है कि इस्लाम के लिए आप लोग शहादत और कुर्बानी देते हैं, जिस पर इमाम का दिल जो है तड़प जाता है. कहते हैं शख्स तूने इंसाफ नहीं किया है, हम मान लेते हैं मेरे बाबा की शहादत जो है वो विरसा है, मेरे भाई का कत्ल होना विरसा है, मेरे असगर के हलकूम का ज़बह होना विरसा है, कासिम के जिस्म का की पामाली विरसा है, ये सब मान लेते हैं, लेकिन ये बताओ कि हमारी माँ बहन और फूफियों को के चादरों का लूटना जाना ये भी विरसा है, उन्हें असीर और बे कजावे ऐसे कजावे पर जिस पर पर्दे का इंतज़ाम रहा, उस पर सवार करके एक शहर से दूसरे शहर और एक दरबार से दूसरे दरबार में ले जाना, ये भी क्या मेरे ख़ानदान की मीरास और आदत.

0: हारिस,
1: हारिस तुम अपने दो बेटों को मदाइन भेजो ताकि ये खत हसन इब्न अली तक पहुंचा दें।
2: मैं ले जाता हूं।
1: तुम नहीं, तुम अभी आए हो, रुको। रशीद तुम भी जितना जल्द मुमकिन हो खुद को तलाइया तक पहुंचा दो और हर्ब के हमराह उसका नज्म बरकरार करो और ये तुम्हारी तलाइया पर सालारी का हुक्मनामा है। हम जल्दी ही तुमसे मिलेंगे।
0: अशी
3: जी सरदार।
1: तुम्हारा हमने इसलिए इंतखाब किया है कि माविया के जिंदान बान थे, साहिब जाह मनसब थे और अगर जालिमों की मदद करना चाहते तो हमारे दरमियान न होते। लेकिन उस शैतान से होशियार रहना जो हजार रंग बदलता है और हीले बहाने से इंसान को फरेब देता है। हमारी आबरू तुम्हारे और हर्ब की मुखावेमत में है।
3: घबराइए मत सरदार, जिस दिन मैंने अली मुर्तजा के साथ दिल लगाया दुनिया से दिल उठा लिया और अब वही वादा उनके बेटे के साथ किया है। मेरी सिर्फ लाश माविया की छावनी पहुंच सकती है।
1: मुतमईन हूं सलामती के साथ।
3: खुदा हाफिज।
4: इब्ने अब्बास, एक सवाल ने मेरी फिक्र मशगूल कर दी है। क्यों हसन इब्ने अली के इतने सरदारों में से किंदी नामी मौजूद को तलाइया का सरदार बनाया गया?
1: वो सिफीन और नहरवान में हमारे साथ था। अली ये मुर्तजा के हमरकाब तलवार चलाई, उसकी शुजात और दिलेरी में शक नहीं था।
4: उसका अकीदा कैसा था?
1: कुछ खुदराए था, सरदारी का ख्वाहिशमंद, लेकिन जाहिरन मोमिन मुत्तकी लग रहा था।
4: सिर्फ लग रहा था?
1: हाँ लग रहा था। फिर तुम मुतमईन नहीं थे? नहीं मैं मुतमईन नहीं था। मैं कैसे मुतमईन रह सकता हूं? मैं कौन हूं? मैं गैब जानता हूं जो बातिन जानू। क्या तुम्हारा बातिन जानता हूं? तुम्हारा क्या बातिन है कैस सईद? तुम्हारा बातिन मैं कैसे जानू? हुज्र इब्ने हातम, तुम में से कौन एक दूसरे के बातिन से आगाह है? हम तो खुद अपने आप से मुतमईन नहीं है, बस खुदा जानता है मुझ पे क्या गुजर रही है। हम समझ रहे थे कि वह एक मुत्तकी और परहेजगार इंसान है, लेकिन क्या मालूम कि शैतान ने उसके दिल में घर कर लिया। इब्ने अब्बास, मुसलसल हमारे खेमे का पर्दा उठता है और हमारे लोग अंदर आकर मुझसे पूछते हैं कि आखिर इस छावनी में हो क्या रहा है,
3: सिपाह में क्या हो रहा है
5: और तलाइया में क्या हो रहा है।
1: पूछते हैं कि क्या तलाइया का सरदार माविया से मिल गया है।
3: हम कहते हैं इब्ने अब्बास का कहना है कि यह अफवाह है।
5: लोग पूछते हैं कि तलाइया का जवान क्या खबर लाया है।
1: अल्लाह हमारा सब्र खत्म हो गया है। जवान तलाइया की क्या खबर है? जवान मेरा नाम शिमरजील जोशन है, तुम्हारा बाप मुझे अच्छी तरह जानता है, बल्कि सब अरब मुझे जानते हैं। सुनो, जब मुझ जैसा सरदार तुमसे कुछ पूछे तो फौरन उसका जवाब दो, वरना मुमकिन है कि तुम अपनी जान गवा दो। मैं तुमसे दोबारा पूछता हूं, क्या किंदी फरार हो गया?
4: हाँ,
1: माविया के लश्कर से पनाह ले ली है।
4: हाँ,
5: क्या यह सच है कि तलाइया में अब कोई नहीं रहा?
1: झूठ है।
3: रावल दस्ते से भी कोई फरार नहीं हुआ।
1: चंद अफराद फरार हो गए। कितने अफराद?
4: अब तक मालूम नहीं हुआ है।
1: अब तक मालूम नहीं हुआ है? कहता है अब तक मालूम नहीं हुआ।
6: बिसरे साथ
1: बताओ सिर्फ कितने लोग बाकी बचे?

0: इब्न जिलजोशन, बताओ तुम्हारा मकसद क्या है और तुम चाहते क्या हो?
1: मेरा मकसद रोशन है। क्या मेरा मकसद रोशन नहीं है? लोग हमसे पूछते हैं कि ये कैसी जंग है जिसके सरदार दुश्मन से जा मिलते हैं।
2: पूछते हैं कि क्यों ऐसे लोगों को फौज की सरदारी के लिए मुंतखब किया गया।
3: पूछते हैं क्यों हम अपनी जाने ऐसे सरदारों के हुक्म पर जाया करें।
1: और सबसे मुहिमतर ये पूछते हैं कि क्या जमानत है कि अबा मोहम्मद के बाकी सरदार खयानत नहीं करेंगे। ए, बस करो, अपनी बहादुरी मैदान जंग में दिखाओ। पिसरे साथ, मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरा हाथ तलवार के कब्जे पर न पड़े। अगर गिलाफ से बाहर आ गई तो खून पिए बगैर वापस नहीं जाएगी।
0: इब्न जिलजोशन, तलवारें देखी हैं जो गिलाफ से बाहर आई और वापस नहीं गई, बेसाहब रह गई।
1: मेरी नहीं थी, अभी नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं। चलो

0: दरवाजा अमीर के बगैर नहीं खुलेगा। हाँ मुगैरा, क्या खबर है?
1: अमीर मुझे बोलने की इजाजत दें।
0: तुम कब से अमीर से बात करने के लिए इजाजत मांगने लगे हो? तुम तो हमेशा इतना बोलते हो कि आखिर में अमीर को कहना पड़ता है कि बस करो।
1: लेकिन अभी अभी अमीर के लिए खुशखबरी आई है।
2: यकीन नहीं करूंगा, अगरचे छुपाऊंगा भी नहीं। हाँ, अगर तुम कहोगे कि तुम्हारे जासूसों की गर्दनें उड़ाई हैं, तो मेरे लिए बायस मसर्रत होगी।
1: लेकिन अमीर, अगर मेरी लाई हुई इस खबर को सुन लें, तो मुझे यकीन है कि मेरी पिछली सभी खताओं को बख्श देंगे।
2: मुगैरा, बताओ खबर क्या है? मुझे परेशान कर डाला। अब मुझ पे कौन सी आफत ढाई है? क्या लश्कर का कत्लेआम हो गया? क्या कोई आसमानी बला नाजिल हो गई, या सिपाहियों में ताऊन फैल गया? मैं मुतमइन हूं कि इस खबर के सुनने के बाद हम सबको सोग मनाना पड़ जाएगा।
1: हमारे जासूसों ने हसन इब्न अली के लश्कर के सरदार किंदी को फरेब दे दिया है, और इस वक्त वो हमारी फौज में है अमीरुल मोमिनीन के रहमो करम पर।

0: आम्र, तुम्हारा क्या ख्याल है?
1: हाँ, इसमें शक नहीं कि आबा मोहम्मद को बड़ी शदीद ज़र्ब आई है, लेकिन अभी काम तमाम नहीं हुआ है। मगर उसके तराइया के सरदार को धोखा देना एक ऐसा हसीन हुस्न है जो हमारा रास्ता वाज़ेह करता है।
0: हमारा हदफ वाज़ेह था कि हसन के दोस्तों को बहकाना और कमजोर करना, और आखिर में हसन इब्ने अली को सुलह पे मजबूर करना।
1: पहले भी तुमसे एक बार कहा था कि उसके लिए सुलह की उम्मीद दिमाग से निकाल दो। वो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ बैठकर मजाकरा करे, सुलह के वास्ते आमादा हो जाए, अहदनामे पर नज़रसानी करे, तुम्हारी खिलाफत को कबूल करे और इमामत से दस्तबरदार हो जाए।
0: तो हमें क्या करना चाहिए?
1: तो फिर सुनो, अब हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनके साथियों को उसके अतराफ से मुंतशिर कर दें, उनकी ताकत को कमज़ोर कर दें, उन्हें बेयार और मददगार छोड़ दें। लेकिन हम तलवार हाथ में नहीं उठाएंगे, हम उनके मुकाबले सफ आरा नहीं होंगे, हम जंग नहीं करेंगे और हमेशा सुलह का नारा लगाएंगे और मुसलमानों के खून की हिफाजत का दम भरते रहेंगे और ख़ुद को बैत रसूलुल्लाह और उनके फर्जंदों की हुरमत का पासदार जाहिर करके यकीन दिलाएंगे। लेकिन बिला शक कभी भी अबा मोहम्मद सुलह के वास्ते तैयार ना होंगे। यही सबब होगा कि वो मुसलमानों की निगाह में ज़िद्दी, कीना परवरी, जंग तलबी में मशहूर हो जाएगा और वो तुम्हारी दावत मोहब्बत को कबूल न करके जाह तलबी पर महमूल होगा। ऐसे मौके

0: सलाम मालिक।
1: थोड़ा सा खाना ले आओ, हाथ धोने के लिए कुछ पानी भी ले आना।
0: जी अच्छा।
1: हाँ अशअस इब्न उमैर,
2: हम बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, कहाँ थे?
1: अमीर का हुक्म बजा ला रहे थे।
3: ऐसी खबर लाया हूँ जो 10 थैली सोने के सिक्कों के बराबर है।
1: तुम खरीदार हो तो मैं एक थैली में बेच सकता हूँ। किंदी भाग गया है और मुआविया से जाके मिल गया है।
4: ये खबर कहाँ से लाए हो?
1: 6 थैलियों में हमने खरीद लिया। इस खबर का चर्चा तो पूरे कूफे में है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नुखैला क्यों नहीं गए?
4: किंदी के फरार का बहाना करके हम नुखैला से निकल आए ताकि बैठ के कुछ मशवरा करें।
1: वही करना है जो पहले तय था।
3: मुमकिन है कि हालात तेजी के साथ बदल जाएं और सब कुछ अबू सुफियान के बेटे के हक में हो जाए।
0: अब हालात बदल गए हैं, किंदी के भागने ने हर चीज बदल दी है।
4: हमें हमारी जिम्मेदारी का पता चलना चाहिए।
1: हम तो पहले ही तुमसे अमीर की जानिब से वादा कर चुके हैं।
0: तुम्हारा वादा काफी नहीं, खुद अमीर वादा करे और जमानत दे।
4: यही कि हमारी मिल्कियत पे निगाहें हिर्स हवस न डाले और हमारे लिए नाम मुय्यन करे।
1: कैसा है नाम? तुमने तो अभी कोई कदम भी नहीं उठाया।
3: यह कदम जो हमने अब तक नहीं उठाया है, कदम ना उठाने का ही तो तुमसे इनाम मांग रहे हैं।
4: वरना हम नुकैला लौट जाएंगे और ऐसा जंग का नारा लगाएंगे कि हिंदा कब्र में तड़प उठेगी।
1: इम्र अपनी जबान को लगाम दो, हम पहले ही बात तय कर चुके हैं। एक कासिद को हमने अमीर की तरफ भेजा है जिसके जवाब का इंतजार करना चाहिए।
3: अमीर का जवाब इब्ने अब्बास के लश्कर के नुखैला छोड़ने से पहले पहुंच जाना चाहिए ताकि हम सबका वजीफा मुकर्रर हो सके।
1: हाँ कोई कयामत तो नहीं आई है जो तुम इतना परेशान हो रहे हो? किंदी फरार कर गया है और कोई खास बात तो नहीं है? अबा मोहम्मद मदायन में फौज जमा कर रहे हैं। इब्ने अब्बास और सईद जंगी तरबियत में मसरूफ हैं। कैस व हजर व अदी मुस्तकिल मुख्तलिफ कबीलों से मिल रहे हैं और उन्हें जंग के लिए उभार रहे हैं, और तुम लोग घबराए हुए यहाँ आए हो और अपने अंजाम का पूछ रहे हो?
4: हम पे नुकता चीनी ना करो, क्या तुम्हें अपने अंजाम की फिक्र नहीं?
1: हम सब का अंजाम अमीर की सखावत पर मुनहसिर है, घबराओ नहीं। आओ बैठकर सोचते हैं कि इस वक्त क्या करना चाहिए। जरा ये तो बताओ, अब जबकि तुमने नुखैला को छोड़ दिया है तो छावनी की खबरें कौन हम तक पहुंचाएगा?
0: घबराओ मत, हमारे लोग हैं वहां पर, हमें सारी खबरें मिलती रहेंगी।
1: ये बिल्कुल ठीक है, नुखैला हमारे जेर नजर है लेकिन मदायन से बेखबर है और नहीं मालूम कि अबा मोहम्मद क्या कर रहे हैं।
4: हमारी तरफ से मदायन में भी कोई है जो मदायन के हालात से हमें आगाह करता है।
1: कौन है वो?
4: अशस। उसकी बेटी अबा मोहम्मद के घर में है। अब माविया को हमारी खिदमतों की कदरदानी करनी चाहिए। क्या खबर?
3: कूफियों ने अपने चेहरे छुपा लिए हैं, अब वो हमसे मुलहक नहीं होना चाहते।
4: इब्ने अब्बास, हमें इसी ग्रोह पर कनात करना चाहिए। इन्हीं लोगों के साथ अबू सुफियान के बेटे के जवाब में निकलेंगे। अबा मोहम्मद का इंतजार।

0: चलो चलो भाइयों, चलो मस्जिद, चलो लोगों मस्जिद, चलो जवानों मस्जिद, चलो। बड़ी अहम खबर है भाइयों, बड़ी अहम खबर है। तुम्हें जानना चाहिए कि मस्जिद में क्या बात होगी। जल्दी करो, मस्जिद पहुंचो।
1: क्या बात होगी? होगी नहीं पता।
0: जवानों मस्जिद, चलो। बड़ी अहम खबर है भाइयों, बड़ी अहम खबर है।
2: चलो मस्जिद चलो, वहां बहुत अहम खबर है। भाई साहब आप भी आइए, चलिए मस्जिद चलिए, सब
0: चलो
2: लोग मस्जिद में
0: चलो
2: हैं।
1: मस्जिद में चलिए,
0: भाइयों,
1: सब लोग
0: मस्जिद
1: मस्जिद में हैं।
0: चलो लोगों मस्जिद,
1: भाई
0: चलो
1: साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
0: जवानों
1: मस्जिद में
0: मस्जिद,
1: चलिए
0: चलो। बड़ी अहम
1: चलिए
0: खबर
1: चलिए,
0: है
1: तशरीफ लाइए,
0: भाइयों, बड़ी अहम खबर है।
1: आ जाइए।
2: सब आपका इंतजार में हैं,
1: आप वहां क्यों खड़े हैं? मस्जिद में चलिए, चलिए ना।
2: जल्दी आइए मस्जिद की तरफ, चलिए।
1: जल्दी करो।
3: क्या हुआ?
1: अपने चांदी उठाओ, निकलो।
3: क्यों भाई, क्या बात है?
1: चलो नहीं जानते जंग के
0: भाइयों,
1: लिए सब कौन
0: चलो
1: खैला ले जा
0: मस्जिद,
1: रहे हैं?
0: चलो
3: जंग
0: लोगों
3: भाई,
0: मस्जिद,
3: सब कोई जंग
0: चलो
3: नहीं होनी। जाके अपना
0: जवानों
3: कारोबार
0: मस्जिद,
3: करो,
0: चलो।
3: हमें भी अपना
0: बड़ी
3: कारोबार
0: अहम
3: करने दो।
0: खबर है
3: जाओ जाओ।
0: भाइयों, बड़ी अहम खबर है।
2: क्या आप मस्जिद नहीं आएंगे?
0: तुम्हें
3: आऊंगा
0: जानना चाहिए
3: आऊंगा।
0: कि मस्जिद में क्या बात होगी। जल्दी करो, मस्जिद पहुंचो।
4: खुदा की कसम, तुम्हारे जैसे बुजदिल और काहिल लोग जमीन के किसी तबके में भी नहीं पाए जाते। नबती बदवी और शिमाली सहरा के कबीले और कबीलों के साथ नारे लगाते हुए कूफे की तरफ बढ़ रहे हैं, और तुम हो के हर बात से बेखबर, लापरवाही में पड़े हो। खूंखार दुश्मन तुम्हारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जो लाशों के ढेर लगा देगा, तुम्हारे घरों को उजाड़ देगा, और तुम्हें इसकी परवाह भी नहीं। वो तुम्हारे मर्दों को कत्ल कर देगा, तुम्हारी औरतों को कनीजे मना लेगा। खुदा के लिए अब तो होश में आ जाओ, इससे ज्यादा जहालत का सबूत ना दो।
5: मुझसे जहाद की तवक्को रखते हो? मेरा जहाद का जमाना गुजर चुका है भाई। जब मैं ताकतवर था तब लड़ा, खुदा के लिए तलवार चलाई, मुसलमानों के साथ मिलके काफिरों के खिलाफ जंग की। अब जंगो जिदाल का वक्त गुजर चुका है, नमाज और तौबा का वक्त।
4: तुम लोग हसन इब्ने अली के साथ वही कर रहे हो जो उनके बाबा अली के साथ किया था। कभी कहते हो कि काश्तकारी का जमाना है, कभी हरे भरे खेतों का बहाना करते हो, फिर गल्ला काटने का और बाजार में बेचने का वक्त आ गया, और जब सर्दियां आती हैं तो ठंडक का बहाना होता है। अमीरुल मोमिनीन नुकैला में बैठकर तुम लोगों की बुजदिली का शिकवा कुएं से कर रहे थे। ऐ मर्दों से शबाहत रखने वालों, मैं भी तुमसे वही कह रहा हूं जो अली कह रहे थे। काश कि मैंने तुम्हें नहीं देखा होता और न पहचाना होता।
6: आरिस, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो, और ये जो चंद दिन मेरी जिंदगी के रह गए हैं, नमाज और रोजे में गुजारने दो।
7: मैं खुदा की बारगाह में हसन इब्ने अली की कामयाबी की दुआ करूंगा।
4: कूफे वालों, दुश्मन खुदा तुम्हारे शहर के दरवाजे तक पहुंच चुका है, अपने शकियात को दूर कर लो। फर्जंद पैगंबर तुम्हारी इज्जत और नामूस के दिफा के लिए दुश्मन कुरान से सीना सिपर हुए हैं, और तुम पीछे हट रहे हो। उठा लो अपने हथियारों को, ये खामोशी का वक्त नहीं है। हिम्मत से काम लो और सिर्फ खुदा से मदद मांगो।
5: मैंने रसूल खुदा को अपनी आंखों से देखा है, उनके पहलू में तलवार चलाई, और चंद खलीफों की खिलाफत के दौरे के बाद दीगर गुजारे हैं। ईरान मैंने फतह किया, रुस्तों में फरखजाद की फौज को मैंने शिकस्त दी है। अब मैंने कुछ वक्त बचाया है कि फिक्र करूं। गम-ओ-अलम ने हमारे पूरे वजूद को घेर लिया है। एहसास

0: हूं कि अपनी उम्र बिलावजह इन नाशुक्रे लोगों के लिए गवा दिए। लोगों ने मेरे लिए क्या किया? दूसरों को खिलाफत हवाले नहीं की।
1: क्या मैं उन लोगों से कम था? लिबासे खिलाफत क्या मेरे जिस्म के लायक नहीं थी?
0: मोहलत दो कि गोशे तन्हाई में इस फितने से दूर रहूं। इब्ने अब्बास अपनी फौज लेकर मस्कन आ रहे हैं और हम भी उनके साथ जा मिलेंगे कि अपने वजीफे पर अमल करें और हमारे इमाम के फरमान पर या कत्ल करेंगे या शहीद हो जाएंगे। बकौल मोहम्मद मुस्तफ़ा, इसी में हमारी नजात और कामयाबी है और ये काम मोमिनीन का है। लेकिन वाह हो तुम पर कि तुमने बैत की तो थी लेकिन उसे तोड़ भी डाला है। वाह हो तुम पर कि तुमने अपने दिल की आवाज भी नहीं सुनी। वाह हो तुम पर कि अपनी आखिरत को बुजदिली के बदले में बेच डाला। वाह हो तुम पर कि यही नबती और शामी लोग बहुत जल्द तुम्हारे इन बद आमालियों के बदले में अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे और ये चंद रोजा दुनिया जो तुमने अपनी आखिरत के बदले में खरीदी है ये तुम्हें कभी रास ना आएगी और तुम दुनिया और आखिरत दोनों से हाथ धो बैठोगे। खसरत दुनिया वल आखिरत। वस्सलाम।
2: हम जंग के लिए बिल्कुल तैयार है। हम सबके सब आमादा है। हम सबके सब तैयार है। हम जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तैयार है।
3: हम तैयार है। हम हसन इब्न अली का साथ देने के लिए तैयार है। हम जंग करने के लिए तैयार है। हम जिल्लत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम दुश्मन को नीस्तो नाबूद तबाह बर्बाद कर देंगे। हम हसन इब्न अली के साथ है। हम अल्लाह के रसूल के बेटे का साथ देंगे। अमीर अल मोमिनीन के बेटे का साथ देंगे। हम तैयार हैं। हम हसन इब्न अली का साथ देने के लिए तैयार हैं। हम जिद करने के लिए तैयार हैं। हम जिल्लत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम दुश्मन को नीस्तो नाबूद तबाह बर्बाद कर देंगे। हम हसन इब्न अली के साथ हैं। हम अल्लाह के रसूल के बेटे का साथ देंगे। अमीर अल मोमिनीन के बेटे का साथ देंगे।
4: सलाम बेटी।
5: सलाम पिदर। तुम लोग तो मस्जिद जा रहे थे।
4: नहीं, कैस की बातें मेरे लिए नई नहीं हैं। मैं जानता हूं कि वो क्या कहता है और क्या चाहता है।
5: अच्छी बात कही। मजमे को इतना जोश दिला दिया कि अक्सर लोग जंग पे जाने के लिए तैयार हो गए।
4: हाँ, लोगों को तो जंग की दावत देता है और खुद माविया से मिल रहा है। तुम्हें पता तो होगा कि तलाइया के सरदार किंदी ने क्या किया।
5: हाँ जानती हूँ।
4: वो जो अली इब्न अबी तालिब के बावफा साथियों में से था ऐसा कर गया तो कैस व सईद व हुजर व अदी क्या मालूम कि वो क्या करेंगे। मुतमईन हूँ कि अबा मोहम्मद को तनहा छोड़कर माविया से जा मिलेंगे।
5: पिदर, क्यों अबा मोहम्मद के बावफा साथियों के बारे में ऐसी बातें करते हो?
4: बावफा? मुतमईन रहो कि किंदी से ज्यादा वफादार नहीं है। तुम समझती हो कि अबा मोहम्मद को तलाइया में जो कुछ हो रहा है उसकी खबर है?
5: नहीं जानती।
4: तुम क्या समझती हो, क्या जानती हो कि कूफा और नुखैला में क्या हो रहा है?
5: शायद उन्होंने कहा हो कि तुम नुखैला को छोड़कर कूफे आ गए हो।
4: अपने बाप को ताना देती हो। हमने नुखैला इसलिए छोड़ा है कि हसन इब्न अली को खबर दें कि वो सिपाहियों के हाल की फिक्र करें। सुनो बेटी, हसन इब्न अली मेरा दामाद है और मेरी बेटी का शौहर है। जो कुछ मेरे और अली इब्न अबी तालिब के दरमियान था वो खत्म हो चुका। जंग नहरवान, इब्न मुल्जिम, सब कुछ खत्म हो गया। अब बात दूसरी है। अगर खिलाफत हसन इब्न अली को मिल जाए तो तू मेरी बेटी है जो इज्जत शौकत एहतराम की मालिका बन जाएगी। क्या कोई बाप ऐसा भी है जो अपनी बेटी के लिए नेकबख्ती के अलावा कुछ और भी सोच सकता?
5: मैं क्या बताऊं पितर?
4: क्या तुम्हें अपने बाप पर इत्मीनान है?
5: खुदा हाफिज।
4: जोदा, अपने कान और आंखें खुली रखो। कुछ खाइन और नमक हराम अबा मोहम्मद के इर्द गिर्द जमा है और चाहते हैं कि इन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दें। کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے ان کی جان کا قصد کیا تھا اور چاہ رہے تھے کہ الزام میری گردن پر آئے اور جب کامیاب

0: हुए तो मारने वाले को फौरन ही मार डाला ताकि हकीकत किसी पर न खुल सके। मैं मुतमईन हूं कि यह काम माविया के जासूसों का भी नहीं था।
1: तो फिर किसका काम था?
0: ये उन्हीं का काम है जो मीठी मीठी बातें करते हैं और अबा मोहम्मद की बयात का दम भरते हैं, लेकिन खुफिया तौर पर उनके दुश्मन के साथ मिले हुए हैं। बेटी चौदा,
1: अंदर ना आना। खुदा हाफिज।
0: आओ बेटी,

कहूँ उस पर अमल करो। जो खबर भी आए मुझे फौरी तौर पर आगाह करो, जो भी कसद आए और पैगाम लाए उसकी इत्तला भी मुझे फौरन दो। समझ रही हो बेटी मैं क्या कह रहा हूँ? मुझ पे भरोसा रखो, यकीन करो तुम्हारे शौहर की ज़िंदगी यानि मेरे दामाद की ज़िंदगी महफूज नहीं है। चौकन्ना रहो, हम और तुम एक दूसरे की मदद से हसन इब्न अली को ख़तरों से बचा सकते हैं ताकि उनकी खिलाफत को महफूज रख सकें। ये दुनिया व आखरत की नेकी है और हम इसी को अपना मुकद्दर बनाएं। इस ख़तरनाक अमर की अंजाम दही में तुम मेरी मदद करो। जो भी खबर यहाँ आए मुझे फौरन ख़बर करो, जो कासिद भी आए बिला फासला मुझे बताओ और अपने बाप पर भरोसा करो।

0: Salam aleykum.
1: Aleyküm selam.
2: Ha, क्या हुआ?
3: लोगों ने तलवारें उठा ली हैं।
4: गैस की बातों ने लोगों को वरगला दिया। गैस इब्न साद ने लोगों से इस तरह बातें की जैसे मोहम्मद ने कुफार से बिना की होगी।
3: लानो नफरीन किया, अजाब दोजख को इस तरीके से लोगों के सामने मुजस्सम कर दिया कि लोग कांपने लगे।
4: अबू सुफियान के बेटे के साथ जंगो जहाद की इस तरह बात की जैसे दमिश्क का लश्कर कूफे के दरवाजे के पीछे पहुंच गया।
3: जब मस्जिद से बाहर आए तो सैकड़ों आदमी उनके पीछे जिरा और शमशीर तलाश कर रहे थे ताकि उनके साथ हो जाएं।
2: मैंने गलती की, मैं तुम्हारी बात ना सुनता और मैं खुद मस्जिद जाता तो कैस को ये मौका ना मिलता, बल्कि किंदी के फरार को उस्मान के कुर्ते की तरह बुलंद करके उसी के सर पे मारना चाहिए था।
3: संभालो अपने आप को शेमर, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अबू सुफियान का बेटा ताकतवर है, 60,000 सिपाही हैं उसके।
4: समझते क्यों नहीं, हमारी कोशिश है कि लोगों को मायूस करके अबा मोहम्मद के पास से मुंतशिर कर दे।
2: एक दिल और एक जबान होना ठीक है, लेकिन अगर एक गिरोह फिर जाए तो दूसरा गिरोह उसकी जगह ले लेता है।
4: अगर एक गिरोह क्याम करे तो बहुत लोग उनकी मदद को आ जाएंगे, जोश और वलवले से नारे लगाएंगे।
2: उस वक्त देखोगे कि छलकता हुआ मजमा तुम्हारे अमीर पे हमलावर हो जाएगा और तुम्हारा अमीर गिरता पड़ता दमिश्क के पिछले दरवाजे से फरार कर जाएगा और महल के कोने में औरत की तरह रोएगा।
3: शेम्र, अमीर अल मोमिनीन की हुर्मत का पास रखो।
2: खुदा लानत करे तुम और उस अमीर अल मोमिनीन पे।
4: अगर हमने तुम्हारा साथ दिया है तो यह मत समझना कि हम हिंद के बेटे पर ईमान ले आए हैं या उसको अपना मुक्तदा मान लिया है, बल्कि सिर्फ इसलिए तुम्हारा साथ दिया है क्योंकि हमें अपने मुस्तकबिल की फिक्र है।
2: और नहीं है कि अबा मोहम्मद हिंदा के बेटे को वासिले जहन्नम कर दे या माविया हसन इब्ने अली को कमजोर कर दे, हमें अपने हिस्से की फिक्र है और जब जंग तमाम हो जाए तो हम उसी तरफ रहेंगे जिधर कामयाबी है। आम्र, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, कोशिश न करो कि खुद को माविया का हमदर्द बताओ। तुम्हें सोना और चांदी की फिक्र है और हमें अपनी आखिरत की। तुम हमसे बेईमानी न करो, जो कुछ आज हुआ है अगर दोबारा हुआ तो याद करो कि हमारी पुश्तें नाबूद हो जाएंगी।
3: रुको शेम्र, तुम कुछ ज्यादा घबराए हुए हो। अमीर मुआविया इब्ने अबी सुफियान तुम्हारे तसव्वुर से ज्यादा चालाक हैं। क्या तुम्हें पता है कि इब्ने अब्बास ने जिन फौजों को जमा किया है उसमें कितने दमिश्क के जासूस और गारतगर मौजूद हैं? वो इतने ज्यादा हैं कि अगर अमीर का हुक्म होता तो एक ही रात में तुम और तुम्हारे दोस्तों का सर खेमों ही में काट सकते थे। शेम्र, मुझे यकीन नहीं आता कि जो शोर शराबा कैस ने किया है उससे उसको कोई फायदा पहुंचे।
2: क्या हुआ?
5: ये सारी चीजें हमारे मफाद में हैं। अबा मोहम्मद के घर पे हमने एक ऐसी मकबरा रखी है कि वहां पर जो कुछ भी होता है वो हमें लम्हे लम्हे की खबर बिला फासला देती है। और ये मेरी बेटी जौदा है जो सबसे ज्यादा अपने बाप पर एतमाद करती है।

0: machine. Come on.
1: ये क्या?
2: सिक्के। इसी तरीके से किंदी को धोखा दिया, इसी तरह की थैली उसके खेमे में लटकी देखी। नहीं, ये निशानी है। अगर धागा तोड़ के तुमने थैली उठा ली तो इसका मतलब है तुमने मामला कबूल कर लिया है।

0: यार मुझे अकेला छोड़ दो।
1: क्या करना चाहते हो?
0: नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। जाओ।
1: तुम्हें यकीन है नहीं चाहते मैं यहां रहूं?
0: हाँ, जाओ। चाहता हूँ कि अकेला रहूँ।

0: वाह मोहम्मद।
1: तलाया का सरदार कुछ देर पहले किसी आदमी के साथ छावनी छोड़कर फरार हो गया है।
2: किस रास्ते से गया है?
3: पहाड़ियों की तरफ से।

0: आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ और देखिए क्या होता है।
1: ये मर्द जासूस है, कल रात इसने मेरे खेमे में एक सिक्कों की थैली लटकाई और चाहता था कि मुझे भी किंदी की तरीके से दुनिया के माल के वादे पर पिसरे हिंद के सुपुर्द कर दे, और मेरी भी शर्त ये थी कि मैं सिर्फ पिसरे हिंद के लश्कर के सिपा सालार से बातचीत करूंगा, और वो भी अकेला। उसके बाद उस टीले के पीछे इस मर्द साद इब्ने आसिम से मुलाकात की, और इस मर्द को जो आप देख रहे हैं ये मेरे और पिसरे हिंद के मामले का नतीजा है।
2: मार दो इसे, मार देना चाहिए, इसे कत्ल कर दो।
1: सुनो सुनो, ठहरो, जल्दियां करो, इसको आजाद कर दो, इसको जाने दो, ताकि ये जाकर के हमशियों का पैगाम मुआविया तक पहुंचा दे। हर्ब, इसको खोल दो। ए रुक जाओ, मुआविया से कहना फर्जंद रसूल खुदा का सौदा उसके भेजे हुए सिक्कों से नहीं करेंगे, और कहना हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, और अब उसके और हमारे दरमियान ये तलवार ही फैसला करेगी। अब जाओ, ये जासूस है और जासूस की सजा जंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ मौत है। इसको ले जाओ और छावनी के बाहर जाकर इसकी गर्दन उड़ा दो। ले जाओ इसे।
3: मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं।
4: रशीद मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। सरदार मुझे माफ कर दो, मैं समझता था अब तुम्हें नहीं देख पाऊंगा।

0: से कहा, मन अंता, आप कौन हैं? फरमाया, मैं अली हूँ। फरमाया, अली कौन? कहा, मेरा नाम अली इब्न हुसैन है। कहा, हुसैन कौन? कहा, हुसैन सिप्त रसूलिल्लाह, उनका बेटा अली हूँ मैं। फरमाया, मैं नहीं मानता कि आप अली इब्न हुसैन हैं। कहा, क्यों नहीं मानते? कहा, इसलिए कि जो बनु हाशिम के ख़ानदान से आता है वो नज़रें झुका के नहीं आता, जालिम की निगाह में निगाह डाल के गुफ्तगू करता है। आप की नजरें झुकी हुई हैं। अभी हाल पहले आपके चचा, अगर आप कहते हैं कि आप अली इब्न हुसैन हैं, तो आपके चचा मुस्लिम आए थे, हाकिम की आंखों में आंखें डाल के बात की थी, आपकी नजरें झुकी हुई हैं। इमाम सज्जाद ने फरमाया, तुम्हारी बात सही है, मगर बहुत बड़ा फर्क है। जब मुस्लिम इब्न अकील आए थे, तनो तन्हा थे, मेरे साथ मेरी माएं, मेरी बहने, मेरी पुपिया सर बरहना है, सज्जाद की गैरत गवारा नहीं करती।
1: सियालम الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون ماتم حسين

0: उफ, इस कदर हिमाकत और बचपने पर दमदमी मिजाज और याश आदमी, अपने घटिया हरकतें शुरू कर दी उसने। जब तक हुसैन जिंदा था उसको मेरी कुर्सी खराब करने की पड़ी हुई थी कि हुसैन को मार दो। अब जब के हुसैन मारा गया है तो अफसोस कर रहा है। बेवकूफ, जाहिल, घटिया, बंदरबाज आदमी, ये क्या खेल मजाक है? अरे अरे अरे अरे, अरे। जाहिल कम अकल कहीं का चाहता है कि जो कुछ मैंने किया धरा है वो सब एक सफेद दाढ़ी वाले बुड्ढे के मशवरे पर खराब कर दे। गधे ने मुआविया की होशियारी और समझदारी में से एक जर्रा भी विरसे में नहीं पाया।
1: ऐसा क्या लिख दिया जो आप इतने गुस्से में आ गए?
0: क्या लिखा है? अपने कत्ल का हुक्म अपने ही नालायक हाथों से मोहर कर दिया है। जाओ पढ़ लो। लिखा है फौरन मुख्तार सकाफी को जिंदान से आजाद कर दो। पता है क्यों? उमर इब्ने खत्ताब के बेटे की गवाही के मुताबिक मुख्तार का कूफे के हादसात में कोई अमल दखल नहीं था। हाँ, खुमार बाज लड़का, खलीफा सानी का बेटा, मुख्तार का बहनोई है। जाहिर सी बात है उसकी हिमायत में है, ना कि उसके खिलाफ। यकीनन मुख्तार ने अपनी बहन से मदद मांगी है। उसकी बहन ने अपने बीवी के गुलाम शोहर से ये चाहा है कि कुछ झूठी बातों या मुट्ठी बर्बाद और नसीहत के साथ और कुछ अल्फाज की चाशनी और मिठास के साथ यजीद को खत लिखे और मुख्तार की आजादी तलब करे। तुफ है उस सियासत में हारे हुए बाप की कब्र पर।
1: आप भी अपना मुंह गंदा कर रहे हैं। आप भी खलीफा को खत लिखकर उसे माजरे की हकीकत से आगाह कर दे।
0: नहीं हो सकता माकल, नहीं हो सकता। यजीद हुसैन के वाके से डर चुका है। अपने आखिरी खतूत में सारा का सारा कसूर हमारे सर पर डाल रहा है। हमारी ख्वाहिशात का या तो जवाब नहीं दे रहा या किसी न किसी बहाने से उन्हें टाल रहा है। कितनी बार लिख चुका हूँ कि रे की हुकूमत का हुक्म पिसरे साथ के लिए भेज दो। कहाँ है? भेजा उसने। उस माँ की यतीम ने कुछ कम खिदमत की है करबला के वाके में? वो पागल हो गया है इस कदर आजकल कर रहे हैं।
1: तो फिर क्या करना चाहते हैं?
0: यजीद इससे ज्यादा खिदमत का लायक ही नहीं है। उसे आजाद कर देता हूं, मुख्तार को आजाद कर देता हूं, ताकि ख्वाब खुराक खलीफा पर हराम कर दे।

उम्मीद है कि जिंदान तुम्हारे लिए इबरत अंगेज सबक बन गया होगा ताकि तुम अपनी सरकश तबीयत को महार कर सको। इंसान एक अजीब मखलूक है, तबीयतन गुनाह का रुझान रखता है, बिल्कुल आदम वशर की तरह। हम सबको इस बात की जरूरत है कि हमारी रस्सी को ढीला या कस दिया जाए ताकि हमेशा हम अपनी मनचाही राह पर ना चल सकें। खलीफा की मुदाखलत बायस हुई कि तुम्हें ना मारूं, इसीलिए आज तुम जिंदा हो। अलबत्ता बिन हुरैज और अपने बहनों के लिए दुआ करो, एक ने मुझसे शफात की है और एक ने खलीफा से। लेकिन ये ख्याल रखना मुख्तार, मुझे कोई मौका मत देना। तुम आजाद हो मुख्तार, बिल्कुल आजाद। सिर्फ एक शर्त है, कूफा में मत रहना। तुम्हें 3 दिन की मोहलत दे रहा हूं ताकि कूफा से निकल जाओ। 4th दिन अगर तुम कूफा में नजर आए, तुम्हारा खून तुम्हारे जिम्मे, दफा हो जाओ।

0: खिलाफत बन जाओगे।
1: मैं मुख्तार का बेटा हूँ पुप्पी, इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए।
0: अच्छा अच्छा, मैं मुख्तार का बेटा हूँ, समझता है किसी सिकंदर का बेटा है। तुम और तुम्हारा बाप अजाब के फरिश्ते हो। खुदा की कसम जमाना बदल गया है, आधे गज का लोथड़ा क्या कद निकल रहा है। ना कौम और कबीले की हुर्मत का ख्याल है, ना बड़े छोटे की तमीज।
2: क्या हुआ है बहन, तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है?
0: ये लड़का मुझसे क्यों उलझ रहा है?
2: ए बहन, ये भी मुझ बदनसीब की किस्मत का एक तमाशा है, इनमें एक बार जरूर मेरा खून जलाता है।
0: गेंदे के फूल के पौधे से गुलाब की कली तो उगने से रही बहन, ऐसे निराले ही पैदा होते हैं। मुख्तार ने क्या गुल खिलाए होंगे जो उसका बेटा खिलाएगा। तुम्हारा अपना कसूर था बहन, जब से तुम मुख्तार की नजरों में कमतर हुई हो, इस बच्चे ने भी देखा देखी बाप की हरकतें शुरू कर दी हैं।
2: ये हरकतें नहीं है, बाप के फिराक में बच्चे मसीह चिड़चिड़े हो गए हैं।
3: अम्मा देखिए बाबा की सूरत बन गई ना।

0: माँ की जान, जाओ।
1: साबित कहाँ हो?
0: उम्र कैसा है जारिया? बच्चे कैसे हैं?
2: तुम्हारी दुआएं हैं, तुम खुद कैसी हो?
0: कल की तरह, परसों की तरह। अब तक मैं मुख्तार के ना होने की आदत नहीं डाल सकी हूं। दरवाजे की हर आवाज में मेरा दिल बेचैन हो जाता है, मेरे ख्वाबेश ज्यादा हो गए। अपनी मौत के दहाने तक मुख्तार की राहें तकती रहूंगी।
2: तुम कुछ भागदौड़ क्यों नहीं करती हो बहन? मुख्तार के ऐसे रुसूख वाले रिश्तेदार कम नहीं हैं। तुम हसद क्यों नहीं करती नारिया? जरा अपनी सौतन की तरफ देखो कि जो हर कसो नाकस के आगे हाथ जोड़ती फिर रही है कि मुख्तार के लिए कुछ कर सके, तो फिर जाहिर सी बात है कि मुख्तार को पता चलेगा तो उम्र मजीद उसकी दिलो जान नजर आने लगेगी उसे। तुम बस बैठी रहो, जिगर जलाती रहो, ख्वाब देखती रहो। कल को मुख्तार आजाद हो जाएगा तो जो थोड़ी बहुत मोहब्बत तुमसे है वो भी उम्र को नसीब हो जाएगी।
0: तुम दुआ करो मुख्तार आजाद हो जाए, उसकी सारी मोहब्बतें उम्र को बख्श दूंगी। जब तक मुख्तार आजाद था उसे एक आधा इंसान देखती थी, वो इंसान जो आधा मेरा है और आधा उम्र का है। जब से वो कैद हुआ है मैं समझ गई कि सिर्फ उसका साया 10 मर्दों से ज्यादा अहमियत रखता है।
2: हाय, तुम कितनी सादा लो और दिल लगी वाली औरत हो। उम्रा मेरी सौतन होती तो उसका दिल सीख में पिरो के खा जाती। तुम्हारा दिल उसके साये पर खुश है, वो साया कि जिसकी ठंडक तुम्हें मिलती है और गर्मी बानो उम्रा को। गम मत खाओ, शायद इन्हीं दिनों तुम्हारा सरताज आजाद हो जाए। बाकी वल्ला आलम।
0: क्या तुमने ऐसा कुछ सुना है जारिया?
2: उमर ने कुछ बातें की जो मुझे खूब समझ में नहीं आई। गोया सफिया के शोहर ने यजीद को खत लिखा है कि जिसमें मुख्तार की आजादी की दरख्वास्त की है।
0: ए बहन, यजीद शाम में है और मुख्तार कूफे में कैद है। सफिया के शोहर को इब्ने ज़ियाद के लिए खत लिखना चाहिए था, ना कि यजीद को।
2: शायद लिख दिया हो, किसी को क्या पता। हमें इंतजार करना होगा कि उमर महल से आ जाए, उसकी सूंघने की हिस्स बहुत तेज है। यकीनन कुछ ऐसी खबरें होंगी जिनसे उसे मुख्तार की आजादी की बू आई है। कुछ मईद नहीं कि उमर आज महल से आए तो हम दोनों को वो खुशखबरी सुना दे। तुम अपने शोहर को पालोगी और मैं बन जाऊंगी शहजादी मुल्के रह। एक महीने से रेह के सफर की तैयारी करके बैठे हैं।

0: पता नहीं खलीफा क्यों आजकल।
1: तेरे सारे हुसैन के बदले में बहुत छोटा सा मामला है। उमर साद को सुलेमान नबी की हुकूमत तलब करनी चाहिए थी।
2: मुख्तार
1: जारिया, तुम और तुम्हारा शौहर मुल्क रे की बादशाहत का ख्वाब साथ अपनी कब्र में लेकर जाओगे। ये फर्जंद रसूल का वादा है। तुम लोग मुल्क रे की गंदम भी न खा सकोगे। जाओ जारिया, एक मलून ज़ईफ़ा का खून मेरे घर में बहना शर्मिंदगी का बाइस न होता तो तुम्हारा सरतन से जुदा कर देता। लोगों के तहफ़ुज़ ने कूफा की हवा को जहरीला बना दिया है।
3: मुख्तार, पूरा कूफा जानता है कि तुम्हारी तलवार बड़ी तेज धार वाली है। मुझे लगता था कि मुख्तार की तलवार जितनी भी तेज हो कम से कम कौम कबीले की रग नहीं काटेगी।
1: नारिया, इस इफ्रियत और इसके शौहर की तलवार ने खून खुदा बहाया है, खुदा की रग काटी है। हुसैन का खून खुदा का खून था जो करबला की तपती हुई रेत पर बहाया गया। आज आखिरी बार शैतान ने अपने नापाक कदमों और सांसों से मुख्तार अबू उबैद सकफी के घर को नजिस किया है। दफा हो जाओ।
3: वैशी था जिंदा ने इसे मजीद वैशी बना दिया। खुदा इस जैसा वैशी भाई बयाबान के भेड़ियों को भी ना दे।

ऐ जख्म खाए हुए शेर घर आना मुबारक हो, ऐ जख्म खाए हुए शेर घर आना मुबारक हो, ऐ रोते हुए बूढ़े घर आना मुबारक हो, ऐ जख्म खाए हुए शेर घर आना मुबारक हो।

0: ये रहा तरन्नुम और रक्सो तरब का लश्कर।
1: उसे परियों के पैरों पर बिठाओ ताकि पैर की तकलीफ भूल जाए।
0: आओ गाने बजाने के जादू से, अपनी नाजली आंखों के जादू से हाथ गर्दन और कमर मटका के हमारे उदास अमीर का तमाम दर्द और गम खत्म कर दो। उनके जिस्मों जान से अदाएं निछावर करो, ठुमका लगाओ और नाचो। अजब है शब सुहानी, कशिश जो तेरी छाई, मेरी नींद है उड़ाई। अजब है शब सुहानी,
2: दफा हो जाओ कनी जहदियो, दफा हो जाओ यहाँ से, मेरी बदबू से नाक पे हाथ रखोगी। आज ये वक्त आ गया है मुझ पर, मेरे पास से बदबू आ रही है बदनाम, मेरे पास से बदबू आ रही है शरीफ जादियो। तुम्हारी वजह से आई है,
3: माफ कर दो मुझे।
2: तुम रात मेरे लिए अजाब लेकर आते हो ताकि तुम मेरा मजाक उड़ाओ। मैं तुम्हारा गला घोट के मार दूंगा, मेरे कोस से बदबू आती है, मार दूंगा तुम्हें, जान ले लूंगा तुम्हारी।

0: माकल मेरे भाई, माकल माकल मरना मत, माकल मेरे दोस्त, मुझे छोड़ के मत जाना माकल।
1: हीला कर मक्का, दफा हो जाओ यहां से।
2: मेरी तो ऐसी की तैसी, कम से कम अपने पांव पर तो रहम करें।
1: आज के बाद रात की तुरंत महफिल बंद, समझ में आया?
0: मेरा पैर, मेरा पैर।
2: क्या हुआ, इतने पागल क्यों हो गए हैं? मेरे मुंह में खाक, कोई जिन देख लिया या उन लड़कियों के सर पे सींग थे?
1: वही जो तुमने सुना है, आज के बाद कोई भी महफिल हमारे नाम पर या हमारे दर्द की तस्कीन के बहाने बरपा होगी तो उसके बानियों का सर काट दूंगा। इनकी तहकीर आमेज नजरें 100 गालियों से ज्यादा बदतर हैं। ये औरतें मुझे ऐसे देख रही थी जैसे नचिस देख लिया हो।
2: नहीं, आप यजीद के खैर संजीदा अहकाम पर भड़के हुए हो और खामोखा इस बिन मां के माकल और तरब के महफिल पर अपना बुखार निकाल रहे हो।
1: मैं थक गया हूँ ऐसे बेहुदा नौजवान की खिदमत कर करके। हुसैन के किस्से पर भी सोच सोच के पागल हो गया हूँ। समझ नहीं पा रहा है कि मुझसे कौन सी गलती सरजद हो गई। बस एक दफा उस बंदरबाज इंसान की वजह से जो मैं गड़े में गिरा हूँ, ये मेरे 7 पुश्तों के लिए काफी है। ये सर फिरा नौजवान हम पर सरदारी करने का हक नहीं रखता। बिल्कुल सारी बातों का इनकार कर दिया उसने। लाना

0: कम से कम आंख का जख्म ठीक होने तक रुक जाते, उसके बाद जाते।
1: मैं शहर बदल हो गया हूँ नारिया।
2: शहर बदल का क्या मतलब बाबा जान?
1: यानी शहर और घर बार को छोड़ देना, घर और शहर से निकाल देना शहर बदर कहलाता है बेटा।
0: तुम्हें 3 दिन मोहलत दी है ना, क्या नहीं दी?
1: हाँ मोहलत दी है, मगर अमान नहीं दी है। नारिया मेरे दिल की आग अगर बुझ गई तो मुर्दों में शुमार होगा, औरतों के आंसू आग पर पानी का काम करते हैं। राजी नहीं कि मेरे घर मौजूदगी में तुम बेताब हो जाओ। चाहती हो मुख्तार को उसकी जंग में मदद करो, बुढ़पारी का मुजाहरा करो। साबित।
2: जी बाबा।
1: मेरी गैर मौजूदगी में तुम घर के मर्द हो, अपने काम में तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। मर्दाना वादा करो कि अपनी बहन और माँ के साथ रहम दिली दिखाओगे, इन लोगों की दिल आजारी नहीं करोगे।
2: है तो मुश्किल काम बाबा, मगर क्योंकि आप कहते हैं तो जरूर। जब भी जारिया भुप्पी और उनके बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, मेरी और माँ की लड़ाई हो जाती है।
1: दारिया, अगर मेरे जख्मों पर नमक छिड़कना चाहती हो तो मेरी बहन जारिया से दर्द दिल करो, अपने आप पर रहम करो। जारिया की हम नशीनी तुम्हें अलग दोज़ख बना देगी।

यही कहीं होगा। उतरो, साहिल को अच्छी तरह छानो, इन्हीं झाड़ियों में छुपा हुआ होगा। एक दूसरे से जुदा मत होना कि तुम्हारा खून बह जाएगा। तीन तीन के ग्रोह बना लो, अकेले मत घूमना कि मुख्तार खतरनाक शमशीर जन है। इन्हीं झाड़ियों के चप्पे चप्पे को छान मारो।

तुम्हारा सवार कहाँ है दोस्त? अच्छा अच्छा, गुस्सा मत हो, मैं समझ गया। अबू इसहाक किसी मुश्किल में पड़ गया है, तुम्हें मदद के लिए भेजा है ना?

0: काली घोड़ा एक चाल थी अहमको, तुम में से किसी के दिमाग में नहीं आया कि उसे रोक लेते।
1: मेरे दिमाग में आया था, मगर तुम सरदार हो, मैंने देखा तुम चुप हो तो मैं भी नहीं बोला।
0: चुप हो जाओ, उसके साथी लग रहे हैं। जल्दी करो, हमें भागना होगा। जल्दी करो अहमको, हमें भागना होगा। जल्दी करो अहमको, आ गए।
2: इनका पीछा मत करो, जख्मियों को कैद कर लो, इनके मुंह खुलवाने होंगे।
3: अबू इसहाक़,

कहाँ हूँ अबू इसहाक? मैं हूँ कियान। मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं हूँ कियान। अपने आप को जाहिर करो, खतरा टल गया है, चेलों को भगा दिया है हमने।

0: खूब अच्छी तरह देखो ज्ञान। शबाहत रुस्तम रखता हूं क्या मैं?
1: तुम हमेशा मेरे ख्यालों के रुस्तम हो मुख्तार।
0: रुस्तम की आंख जख्मी नहीं थी।
1: पहलवान के जिस्म पर तो हर जख्म जीनत होता है। ये सूलिए के साथ तो और दिलचस्प हो गए हो।
0: रो ज्ञान, गिरिया करो। मजलूम तश्तना नवा के लिए खून के आंसू रोना चाहिए, अश्कों से नहीं। तुम क्यों काफिला इश्क से पीछे रह गए?
1: रास्ता भटक गया था अबू इसहाक।
0: जब तुम जैसा रस्तों का आशना रास्ता भटक जाए तो नाबद लोगों का क्या गुना?
1: रास्ता बंद किया हुआ था, बेराहे से गया, जितना भी दौड़ा मकसद को ना पा सका। जब नैनवा पहुंचा हूं तो सरे बुरी दान नजरे पड़ता।
0: शर्ते इश्क जुनून है, हम रह गए क्योंकि मजनू न थे।

0: तुम्हारे जिंदा और मुर्दा पे लानत। कौन सा गधा बोल रहा था कि मार देंगे, कत्ल कर देंगे, तो फिर क्या हुआ? घोड़े की अकल इन जानवरों से ज्यादा है। सींग वाले गधे देखते हैं, ये लो 20 मिसालें हैं हमारे पास। कितनी आजिज़ाना इल्तिमास की थी मैंने कि होशियार रहना। मुख्तार वो रिंद है जो तमाम रास्तों से वाकिफ है।
1: सरकार, आपने खुद फरमाया था कि मुख्तार अकेला है, हमें उसके साथियों का अंदाजा नहीं था। मुख्तार हमारी मुट्ठी में था कि उसके साथी आ गए।
0: अबे चुप कर जाहिल अकल से पैदल। एक जरा बराबर भी अकल होती तो मुख्तार के घोड़े का रास्ता रोक लेते, उसके बाद देखते कि मुख्तार तन्हा तरीन अकेला है। अब जहन्नुम में जाओ, तुम्हारी शक्लें ना देखूं मैं। लाश खाने वाले जानवर,

0: कुछ बोलो शिमर, क्या करें?
1: ऊंट पर छुपकर नहीं बैठा जा सकता, मुख्तार को खुल्लम खुल्ला मारना होगा। वो अपने आप को अपने साथियों तक पहुंचा चुका है, चार अंधे बूढ़े सिपाहियों के साथ उसे नहीं पकड़ा जा सकता। हमें एक लश्कर तैयार करके उससे पहले कि मुख्तार मजीद लश्कर जमाए उसे खत्म कर दें।
0: कौन सा लश्कर शिमर? अपने मुर्दगान की कब्रों से सिपाही लेकर आए?
1: शेख साहब किस लश्कर के साथ रे की तरफ जाना चाहते हैं?
0: मुझसे चाल खेलोगे माँ के यतीम? मेरा मजाक उड़ाते हो खबीस कहीं के? कर्बला में मैं सिर्फ तुम्हारे हाथों इस घड़े में गिरा हूँ। तुम ना होते तो खूने हुसैन से मेरा हाथ आलूदा ना होता।
1: तुम हुकूमत रे के लालच में घड़े में गिरे हो, मेरा गिरबान किस बहाने पकड़ रहे हो? जब हुसैन से जंग करने का हुक्म तुम्हारे हाथ में दिया था मैंने, तो घोड़ा घुमाकर वापस क्यों नहीं आ गए? क्यों रह गए? मर्दों वाली बात करो, जब गुनाह किया है तो मुंह मत चुराओ। मेरा हाथ और तुम्हारा हाथ दोनों एक जितने खूने हुसैन से आलूदा हैं, समझे?
2: एक दूसरे की जान के दर पे हो। मुख्तार ने अभी तलवार नहीं खींची तो तुम लोगों की जान जा रही है। जब तलवार खींच लेगा तो क्या होगा? मुख्तार तुम्हारे हाथ से निकल गया, यकीनन कहीं ना कहीं तुम लोगों की गलती थी। बजाय इसके कि अपनी गलती पर गौर करो, एक दूसरे को काट

0: जानो शेख खून हुसैन को हमने संभी लेना चाहते।
1: बकवास मत करो भेड़िए की औलाद।
0: ये लीजिए, अब इसकी जबान भी गंदी हो गई है।
2: उमर को मेरी खातिर माफ कर दो शिमर, वो आजकल तल्ख जबान, बदमिजाज और बद अखलाक हो गया है।
1: ये क्यों नहीं कहती कि दीवाना हो गया है?
2: दीवाने ना होते तो शिमर से ना झगड़ते। तुम और शिमर एक प्रकार के दो हिस्से हो, साथ रहोगे तो काट सकोगे।
1: सुना नहीं कि किस तरह रे के लफ्ज़ को जबान पे ला रहा है, मुझ पे इल्जाम डाल रहा है।
0: इसका मतलब सिर्फ तुम्हारी जबान हकलाने नहीं लगी, तुम्हारे कान भी कमजोर हो गए हैं। कूफे के लश्कर के सिपह सालार नहीं हो क्या? उस लश्कर के साथ मिलकर रे के फातह नहीं बनना चाहते?
1: लश्करे कूफा? हाँ, लश्करे कूफा अमीरे कूफा के हुक्म के बगैर कहीं से हिलता नहीं है। पगले, तुम क्या समझते हो कि मैं अब तक कूफे में क्यों हूँ? अगर मेरे इख्तियार में होता तो अब तक मुल्क रे के खाक को अर्श के मीनारों से मिला देता।
2: उमर सही कह रहा है, अगर लश्करे कूफा का इख्तियार उमर के हाथ में होता तो मैं कैसा कम था।
1: मुझे लगता है कि वादा हुकूमत रे एक चाल थी ताकि उमर को फरेब देकर हुसैन से लड़ने भेज दिया जाए। मैंने तो वादा वफा कर दिया, मगर खलीफा टाल मटोल कर रहा है और हुक्म नहीं भेज रहा।

0: मैं मुल्के रे की गंदम भी ना खा सकूंगा, नहीं खा सकूंगा। ये वादा है हुसैन है। तुम्हें हसरे आशूर याद है शिमर? तुम्हें याद है हुसैन ने हमें क्या कहा था? तुम्हें और मुझे मैं रे की गंदम भी ना खा सकूंगा। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता शिमर। और अगर ऐसा हो भी, मैं तो रे की गंदम खाने नहीं जा रहा। वहां की महंगी खुराक मेरे लिए काफी है। हाँ, जौ की रोटी खा लेंगे, जौ की रोटी पे गुजारा कर लेंगे। बस
1: बस भी करो उमर, खुद को संभालो। इस कदर परेशान हो तो तुम्हें मुख्तार से डरने की जरूरत नहीं है। ये दीवानगियां ही तुम्हें खत्म कर देंगी। खुद को संभालो
2: उमर। तुम इन खुराफात को नहीं मानते थे? खुदा के वास्ते पागल मत बनो। हुसैन की बातें नाजिल होने वाली वही नहीं है। उसने मौका महल देखा और अंधेरे में एक तीर चला दिया ताकि शायद हम लौट जाएं। हुसैन मौत से वाला होता तो अपने आप को बचा लेता। उठो मुख्तार के लिए कोई फिक्र करें। जितना उसे मौका देंगे उतना ही उसे मारना मुश्किल होता जाएगा। कूफे का लश्कर हमारे इख्तियार में नहीं है तो ना हो। मुख्तार को मारने के लिए हमारे कबीलों के लोग ही हमारे लिए काफी हैं। बशर्ते कि हम जल्दी करें और वक्त जाया ना करें।
1: शिमर ठीक कहता है उमर। तोता पिंजरे से निकलकर उड़ गया है तो दोबारा जाल बिछाओ, कुछ करो, उसे शिकार कर लो। अगर उसे खुदा की अमान में रिहा कर दोगे तो वो एक हैबतनाक दरिंदा बनकर हम सबकी जान ले लेगा।
0: उस खलीफे की औलाद ने हुक्म दिया है, मुख्तार को मार डालेंगे। खलीफा हैरान रह जाएगा कि तुम लोगों की आंखों पे अब्रू है।

दर्द दिल का इलाज करता है। इश्क इससे समाज करता है। करबला में वो कल अकेला था, आज हर दिल पे राज करता है। शहंशाह हुसैन, शहंशाह हुसैन, सिर्फ तुझसे।

मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो हर साल करबला में आपके रोजे की ज्यारत करते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो हर साल करबला जाने वाले काफिलों को हसरत से देखते हैं और हर जायर से रो रो कर कहते हैं, मेरे मौला को मेरा सलाम कहना और मेरा पैगाम देना।

0: कहाँ के रहने वाले हो?
1: कूफा।
0: तुम्हारा क्या करूं, तुम जैसे बुजदिलों का खून मेरी तलवार भी कबूल नहीं करेगी। उठो और अपने घरों को जाओ।
1: जी अच्छा, चलो चलो चलो।

0: देखो आगे, चलो चलें।
1: चलो आ जाओ सब, चले आ जाओ,
0: चलो इस्तकबाल को चलते हैं।
2: सलाम इब्न अब्बास,
3: आगे खैरियत से।

कह दो हमारे सब जासूसों और डाकुओं से कि जो भी हमारे उस जिंदान बान को पकड़ के लाएगा उसे 1,000 सोने के सिक्के मिलेंगे। अम्र आओ मेरे साथ।

0: क्या हो गया अमीर? क्या इब्ने आसिम से तुम्हारा कोई खास रिश्ता है?
1: नहीं।
0: अच्छा, तो फिर परेशान क्यों हो?
1: अमर नहीं जानता, जब हसन इब्ने अली मेरे मुकाबले में आए तो मैं जानता हूं कि क्या करना चाहिए। सब्र करूंगा, तहम्मुल करूंगा और लड़ूंगा। जासूस और गारत

0: कर उसके खिलाफ रवाना करूंगा, हजारों मकरो फरेब का सहारा लूंगा ताकि कामयाब रहूं। लेकिन जब मेरे जिंदानबान ने मुझे इस तरह धोखा दिया तो मैं हैरान हूं, मैं क्या करूं, ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है। जी चाहता है कि अपने हाथों से उसकी आंखों के ढेलों को बाहर निकाल लूं। किस तरह हमारे महल में मकाम हासिल किया, हमारे चाहने वालों पर सिक्का जमाया और जिंदानबान बन गया। हसन इब्न अली के जासूसों को महल के अंदर लाया और फरार हो गया, और अब मेरा मजाक उड़ा रहा है, हमारे जासूसों की गर्दन उड़ा रहा है, हमारे लश्कर के सरदार को अगवा करके पैगाम के साथ मेरे पास भेजता है। मेरे अजदाद की कसम, जब तक अपने हाथों से उसका खून न बहाऊं मैं सुकून नहीं लूंगा।
1: हाँ मैं जानता हूँ, जानता हूँ, मुलाजिमों की सरकशी को बर्दाश्त करना बड़ा सख्त काम है, लेकिन अमीर हमें इससे ज्यादा अहम मसाइल दरपेश हैं। सुनो अमीर, उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास अपने लश्कर के साथ मस्कन पहुंच चुका है और अब दोनों लश्कर एक दूसरे के मुकाबले हैं। हकीकत में इसी नुक्ते पर हमारा और हसन इब्ने अली की फौजों का आमना सामना जंग का फैसला करेगा।
0: उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास के साथ अब हम क्या चाल चलें?
1: नहीं मालूम, यहां मैं बहुत मजबूर हूं। जानता हूं कि उससे लड़ना कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन किस तरह की साजिश करूं मेरी अकल काम नहीं करती। सोचूंगा। उबैदुल्लाह का मसला एक अनोखा मसला है, उसे सोने चांदी के सिक्कों और मनसब से नहीं खरीदा जा सकता। वो बनू हाशिम से है और हसन इब्ने अली का चचाजाद भाई है, उसके लश्कर का सरदार भी है। उसके दिल पर एक ऐसा जख्म है जिसका मदावा किसी मरहम से नहीं हो सकता, इसलिए कि तुमने उसके दो बेटों को कत्ल किया है।
0: कहां जा रहे हो?
1: मुझे जाने दो अमीर, मैं कुछ सोचूंगा।

0: उठो उठो इंदागी बेटी, अब मुझे हल मिल गया है कि मुझे क्या करना चाहिए।
1: क्या बात है अम्र, क्या है अम्र?
0: उठो तो, मुझे हल मिल गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं समझ गया हूं कि किस तरह उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास घुटने टेकेगा। हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि मुकाबला किस तरह बगैर खून रेजी के तमाम होगा। बुलाओ अपने मुशावरीन को।

0: कहाँ है तुम्हारे जासूसों के सरदार?
1: हैं, कुछ यही हैं, कुछ बिखरे हुए हैं।
0: अपने जासूसों के साथ अच्छा राबिता है?
1: हाँ, क्यों नहीं।
0: इब्ने अब्बास के लश्कर में भी,
1: हाँ
0: मदायन में भी?
1: हाँ
0: तुम्हारे बलवाई क्या कर रहे हैं?
2: फैले हुए हैं, हर जगह पे हैं।
0: उनसे तुम्हारा राबता है?
2: हाँ
0: बहुत अच्छा।

0: तुम्हारे मुलाजिमों से फायदा उठाया जा सकता है?
1: क्यों नहीं?
0: तो फिर सबको हुक्म दो कि जिसे चाहें जैसे चाहें मार डालें, खा बैदुल्ला की छावनी में हो या मदायन में।
2: किन लोगों को मार डालें?
0: मुहिम नहीं है, बस जो भी हाथ लग जाए, जहां लग जाए वहीं मार डाला जाए।
3: मगर सरदार, हमारे जासूस और लुटेरे एक दूसरे से बेखबर हैं और मुमकिन है कि आपस में ही एक दूसरे को कत्ल कर डालें।
0: जाए जहन्नम में, मार लेने दो। हुक्म वही है जो मैंने दिया, जो हाथ लगे उसे अमान न देना।
2: अमर, ये क्या करना चाहते हो? कैसा हुक्म दे रहे हो?
0: क्या तुम्हें उबैदुल्ला नहीं चाहिए?
2: क्यों नहीं?
0: फिर हुक्म दो कि जो कुछ मैंने कहा इसका इजरा करें। ऐसा काम करूंगा कि उबैदुल्ला कुछ ही मुद्दत में हैरान और परेशान सर तस्लीम खम किए हुए तुम्हारे पास होगा। फिर फौरन इजरा करें।
2: जो अम्र कहे अंजाम दो।
0: बस जाओ।
2: अब बताओगे तुम्हारे दिमाग में क्या है या नहीं?
0: अब फौरन कासिद को कूफा रवाना करो, तुम्हारे उस आदमी के पास। क्या नाम था उसका?
2: अम्र इब्न हुरैस।
0: हाँ, अम्र इब्न हुरैस। फौरन एक कासिद को कूफा रवाना करो और उससे कहो कि कूफा के बुजुर्गों, सरदारों और कबाइल के रईसों से तुम्हारी हिमायत में और हसन इब्न अली की मुखालफत में एक खत लिखे और फौरन यहाँ भेज दे। क्या खवारिज ने हसन इब्न अली की बैत कर ली है?
2: हाँ।
0: तो फौरन एक खत खवारिज को भी लिख दो और उनसे कहो कि बिला तअम्मुल अपने सरदार को मदायन भेजें और हमारे हुक्म का इंतज़ार करें, ताकि सिर्फ इशारा पाते ही बलवा व फसाद बर्पा कर दे और मदायन की छावनी को आग लगा दे।
2: नहीं समझ सका तुम्हारे दिमाग में क्या है।
0: समझ जाओगे, जल्द समझ जाओगे।

0: अरे मार डाला, तुम लोग कहाँ हो? अरे एक साथी को और मार दिया। अरे किसने मारा? अरे क्या हुआ?
1: क्या हो गया? ईशोर कैसा है? जाओ देखो क्या हुआ है, चलो जाओ।
2: क्या हुआ?
1: जाओ तुम भी जाओ, जाके देखो वहां क्या हो रहा है, जाओ देखो क्या हुआ है।
2: उनका क्या जुर्म था?
3: सिपाहियों को गल्ला और

0: चारा देने से इनकार कर दिया था।
1: अमरास,
2: अमीर के सरदारों पर सलाम। आखिर तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? अजब, अमीर के सरदार आखिर खेमे से बाहर क्यों खड़े हैं?
3: अमीर अभी सो रहे हैं और कुछ ऐसे मसाइल पेश आ गए हैं जिनसे अमीर को बाखबर करना जरूरी है।
2: तुम्हारी दिहाड़ी मैं लूंगा। अगर अपनी दिहाड़ी मुझे देते हो तो फिर मैं अमीर को नींद से उठा सकता हूँ।
0: हमारे पास जो कुछ भी है सरदार का ही तो है।
2: वल्ला सरदार, तेरी सखावत तो शुजात से भी ज्यादा है। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि मरवान अमीर के सोते रहने को बेदार होने से बेहतर समझता है, और ये चचाजाद भाई हाजिर है कि जो कुछ है वो दे दे, बस अमीर जागने ना पाए।
1: नहीं मालूम कौन सा मंत्र पढ़कर अमीर पर फूंक दिया है, जब चाहता है अमीर से जाकर मिल लेता है, और हम अगर जरा सा काम है तो घंटों खड़े रहे यहाँ धूप में।
0: मेरे भी समझ में नहीं आता हम क्या करें। ना तो उसकी बातें संजीदा होती हैं कि हम भी जवाब दें, और ना वो मजाक करता है कि हम हंसे।
4: अब अमीर से मिल सकते हो?

0: अमीर अल मोमिनीन सलामत रहें।
1: अमीर हमेशा खुश रहे।
2: आमती हो अमीर उल मोमिनीन की।
3: मैं नहीं समझ सका कि जब भी तुम तीनों मुझे अमीर उल मोमिनीन कह के खिताब करते हो तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी मुराद मैं नहीं हूं।
4: उसकी इल्लत यह है कि खुदा अमीर को मालूम है कि उसके सरदार खूब इस बात पर अकीदा नहीं रखते।
3: बोस हमरास बाहर इंतजार करे।
4: मैं अपने खेमे में हूं, जब जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना।
3: बोस सरदार हमारे खेमे के बाहर इंतजार करे। बताओ क्या खबर है।
0: हमारे जासूसों ने खबर दी है कि अब्दुल्ला इब्ने याकूब रास्ते में है और किसी भी वक्त मस्कन पहुंच सकता है।
3: कब तक पहुंचेगा?
0: कल तक।
3: कितने लोगों के साथ?
0: 5,000, जिनमें से 3,000 घुड़सवार हैं।
3: बस वक्त पे पहुंच जाए।
0: अमर इब्ने हुरैस ने कासिद भेजा है, उसने लिखा है कि शिम्र अशअस और इब्ने उमेर ने अमीर की इताअत और बंदगी का ऐलान किया है।
3: ये नामर्द लोमड़ी सिफत, अली को मार डाला, अब मेरे कत्ल की साजिश है। हसन इब्ने अली को हमसे जंग पर मजबूर करते हैं और जब जंग की बू आती है तो बंदगी का ऐलान कर बैठते हैं। इनके बारे में तो कुछ समझ में नहीं आता। इस मामले में तो अमरयास से मशवरा करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसी से काम हो सकता है। बस हसन इब्ने अली ने उस जासूस को कत्ल करके हकीकत में मुझे रुसवा कर दिया।
1: अमीर मैं एक चाल चलना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें।
3: चाल? कैसी चाल?
1: जंग की चाल।
3: जंग? कौन सी जंग?
1: हसन इब्ने अली के साथ जंग।
3: किसने कहा है कि हम हसन इब्ने अली के साथ जंग लड़ेंगे?
1: नहीं लड़ेंगे।
3: नहीं लड़ेंगे मेरे सरदार बुजुर्ग, मेरे चचा की औलाद मरवान बिन हकम, तुम उस तजुर्बे को फिर से आजमाना चाहते हो? तुम जंगे जमल में नहीं थे?
1: मैं था उसमें।
3: क्या हुआ?
1: हम हार गए।
3: तो सिफीन में क्या हुआ?
1: उसमें भी था।
3: क्या हुआ?
1: खुदा बेहतर जानते।
3: जंग में शिकस्त हुई,
1: बात जाकर हकमियत पे रुकी।
3: वो चाल मैंने और अमरे आस ने सोचा था। खवारिज धोखा खा गए

0: और इब्न अबी तालिब को जंग रोकने पर मजबूर कर दिया, क्या ऐसा नहीं था?
1: जी ऐसा ही हुआ।
0: तो ये जंग नहीं थी जिसने हमें नजात दी? अगर जंग किए होते तो न तुम होते और न मैं, और ना ही किसी का नाम निशान। क्यों?
1: हो सकता है अमीर।
0: हो सकता है नहीं, हुआ है। अब तुम दोबारा तजुर्बा करना चाहते हो?
1: इस बार हम अली से नहीं लड़ रहे हैं। इस वक्त जो हमारा मद्दे मुकाबिल है वो हसन इब्ने अली है।
0: हसन इब्ने अली को क्या समझा है? सिफीन में नहीं देखा उसने और उसके भाई हुसैन ने क्या किया, किस तरह तलवार चलाई? हम में से कौन उसका हरीफ बन सकता है? तुम, मैं, जहाक, मुगैरा, या वो छोटा शैतान अमरयास? अगर हमें मुबारजे के लिए बुलाएं तो तुम उनका मुकाबला करोगे?
1: बिल्कुल करूंगा।
0: अहमक हो। ये वैसी ही गलती है कि ताकत के नशे में चूर अम्र इब्न अब्दवद ने की, लेकिन उसकी लाश मैदान में बाकी रह गई। अगर मैं और अमरयास अब तक जिंदा हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमने उसका सामना नहीं किया। अली ने हमें सिफीन में जंग के लिए बुलाया और मैंने कबूल नहीं किया, वरना बनी उमैया की शैतनत का बोरिया बिस्तर हमेशा के लिए कब का बन चुका होता। बेशर्म, हम मजबूर हैं अपनी बका के लिए हकीकत को कबूल करें। उसके मुकाबले का वाहिद रास्ता बस फरेब और धोखेबाजी है, और वो भी कि जिस तरह अमरयास समझता है। अब सुनो, बावजूद इसके कि अमरयास इतना खबीस व मक्कार, चालबाज, बेहूदा लालची और हद से तजावुज करने वाला बदतमीज है, लेकिन नहीं मालूम फिर भी मैं उसको क्यों चाहता हूं। हसन इब्ने अली पूरी तरह से जंग चाहता है, लेकिन हम हैं कि इस वक्त सुलह की आवाज उठाना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अमरयास ने सिखाया है। अब जाओ और लश्कर को संभालो ताकि सुलह उसी तरह अंजाम पाए जैसा मैं चाहता हूं। अमरयास से कहो कि आ जाए।
1: जाओ, अमीर का बुलावा है।
2: क्यों, किस लिए?
1: नहीं मालूम।
2: तुमने क्या कह दिया जो अमीर चीख रहा है?
3: अगर अमीर मुनासिब समझे तो वो खुद तुम्हें बता देंगे।
2: तुम लोगों ने अमीर की सुबह बर्बाद की होगी और अब मैं उसका जुर्माना अदा करूं?
1: किस जुर्माने की बात करते हो सरदार? हाकिम मिस्र खुद अच्छी तरह जानता है कि इन मसलों से कैसे निपटा जाता है।
2: हाँ, अब से अमीर के नालायक सरदारों के मसले भी मुझे ही निपटने पड़ेंगे।
0: Gerçekten.

0: आम्र, क्या बात हो गई है? सुना है कि माविया की तरफ से कोई कासिद आया
1: अमीर ने तुम सबको माफ कर दिया है और साथ में इनाम देने का वादा भी किया है।

0: खुशामदीद अहमद, बाबा क्या कर रहे हैं?
1: ठीक है, तुम्हारा क्या हाल है याकूब?
0: सफर कैसा रहा?
2: सफर अच्छा था।
0: अच्छा, हर्ब क्या कर रहा है?
1: शरारतें कर रहा है। उबैदुल्लाह की तरफ से खत लाया हूँ।
0: तो लाओ, हसन इब्न अली का खेमा यहीं पर है।
1: क्या बात है, लगता हालात ठीक नहीं।
0: जासूस पकड़ा गया है
1: यहाँ भी?
0: हाँ, माविया के लोग मुसलसल फितना फैला रहे हैं।

0: ये कैसी जंग, कैसी जंग?
1: अम्र, क्या ये फरियादें हसन इब्ने अली की अफवाज के दिल हिला सकती हैं?
2: सबकी नहीं, लेकिन बुजदिलों को ज्यादा मुस्तरब कर देंगे, और जो वहम शक में मुब्तला है उनके कदम उखड़ जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि उबैदुल्लाह भी हमारी तरफ कदम बढ़ाएगा।
0: सिर्फ उबैदुल्लाह नहीं,
2: उबैदुल्लाह ही हमारी कामयाबी का राज है। उसे धोखा व फरेब की चाह में फंस लो, फिर हसन इब्ने अली के चाहने वालों के बस की बात नहीं।
0: रात में लोगों पे हमले, शब खून क्यों नहीं करता? रूबरू मुकाबले

0: ये कैसी जंग है सरदार, अपने साथी पर भी एतबार नहीं किया जा सकता।
1: भाई भाई पे एतबार नहीं कर सकता, आंखें बंद करो तो जासूस और गारती कत्ल करने के लिए आ जाते हैं।
0: हमारा भी तो सोचो सरदार।
2: हैरान हूं कि क्यों पिसर अबू सुफियान शबहून नहीं मारता। अगर इसी तरह हमले होते रहे तो कोई सिपाह नहीं बचेगा।
3: जाओ सो जाओ सरदार, 3 रात से सोए नहीं हो।
2: कैसे सो जाऊं, वो लोग अपनी जान के खौफ से जाग रहे हैं और मैं उनकी जान के खौफ से जाग रहा हूं।
4: कल रात 10 आदमियों को मार डाला था, उससे पहले 20 आदमियों को मार दिया था और आज रात का खुदा जाने। हमारी समझ में नहीं आता ये कैसी जंग है।
5: कौन है, पकड़ लो, छोड़ना नहीं, मार डालो।
6: मुझे छोड़ दो, मैं जासूस नहीं हूँ, मैं जासूस नहीं हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ दो।
0: सरदार ये पीछे से मेरे करीब आ रहा था, मुझे यकीन है ये मुझे कत्ल करना चाहता था।
6: सरदार ये झूठ है बिल्कुल, मैं तो वजू के लिए पानी की तरफ जा रहा था कि अचानक ये सब के सब मेरे ऊपर टूट पड़े।
0: बेईमान लुटेरा, मार दो इसे।
3: छोड़ दो उसे।
0: छोड़ दे उसे किस लिए सरदार? छोड़ दे उसे ताकि फिर हम पे हमला करे।
6: तुम्हारे पास क्या दलील है कि वो गारत कर?
0: दलील मांगते हो सरदार? पिछले दिनों के कत्लो गारत से बढ़कर क्या दलील चाहिए तुम्हें?
2: कहता हूँ उसे रिहा कर दो।
7: नहीं सुना सरदार ने क्या कहा? छोड़ दो उसे।
0: चलो चलो चले आ जाओ, चलो।
4: इसका क्या करें सरदार?
2: जाने दो,